का सिते डी ई या मलवा रे पिर वो रुम मा द पा गरवार वे ये ना ने कुरुगा रुम मा रिला द मा का लन ऊर पुक कलैवा।